मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करे विभूत हिंथा काल कुवारी काया जुत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत।

की एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जाबुद करख करा करतारा प्रजा धरत देह अपारा जब आ करख करत हो कबहू तुम मैं मृत दे तर सब हूं जेते बदन सृष्ट सब धार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही तेरा।

प्राचीन तन पिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तो चेती तुमरा लखाना जाय पसारा केह बुद्ध सजा प्रथम।

आदि जुगाद स्वरूप जंप अवरचा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरणी परे।

बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: और तंजानिया से मैसेज आया है शनाज भट्ट का कि ये आंसर हॉकी है. नो, हॉकी का भी नहीं है. और अब देखते हैं कि किसने सही जवाब दिया है फातिमा कासम अली के बाद. मेजर और यास्मीन वांजा नौरसिला ने सही जवाब दिया है और उन्होंने वो देश भी बता दिया है जिसकी जिसका ये कौमी खेल है, नेशनल स्पोर्ट है जिसकी. दिनेश पोपट, प्लीज मार्क माय प्रेजेंट जॉइंग योर प्लेलिस्ट. दिनेश पोपट फ्रॉम सिडकप कैंट. रितु गुप्ता, आपका आंसर करेक्ट था, मैंने पहले ही कह दिया है. और प्यार अली भाटिया,
1: जी मुश्किल है, बहुत मुश्किल. ये गाना फिल्म महल का है, 1949 की मूवी है जिसकी धुन करमचंद प्रकाश ने बनाई है. ये मूवी का डायरेक्शन कमल अमोरोई का था और जिसमें अशोक कुमार और मधुबाला ने काम किया है.
0: और लखबीर ने जो कहा है बोट, ड्रैगन बोट रेसिंग, नो. और वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स रीता, मुश्किल है बहुत मुश्किल. ये तो इतना कामयाब हुआ था ना, हिट हुआ था ये गाना, मुश्किल है बहुत मुश्किल. और मंजुला विश्वकर्मा का एक,
2: रात ढलने लगी चांद छुपने लगा, बहुत अच्छा गाना है और बहुत दिनों बाद आपने ये गाना लगाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. और शमशाद बानू, क्या बात है.

0: दिन बन गया, धन्यवाद।
1: जी हाँ, मंजुला विश्वकर्मा आपने सवाल का जवाब भी बिल्कुल सही दिया है। और यस सर कहते हैं, वार्म ग्रीटिंग्स टू अश्विन दोषी। कहते हैं, ड्रिंकिंग वार्म लेमन एंड हनी वाटर और जिंजर टी हेल्प सूद और सूद अ सोर थ्रोट, इट इजीज कंजेशन एंड कीप यू हाइड्रेटेड व्हाइल यू हैव द फ्लू, विशिंग यू क्विक रिकवरी। ये मैंने यासर की जानिब से पहला मैसेज किसी लिसनर के लिए, और वो है अश्विन दोषी के लिए। एक्चुअली हम नहीं चाहते कि अश्विन दोषी की आवाज़ बैठ जाए, वैसे भी वो मीटिंग्स में इतने मसरूफ हो जाते हैं, तो उम्मीद है कि इनका गला ठीक हो जाएगा।
2: ईस्ट एफएम प्रीमियर एशियन मिक्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेकिंग मनी and making money work for you. One pays the bills, the other builds possibilities. Possibilities like passive income, growing investments, greater financial freedom, and a future that's not dependent on just one source of income. That's why at ABSA, we help you build, grow, and protect wealth through every stage of your journey. Because every financial achievement should be the moment you ask, why stop there? Download the ABSA app to open an account today and discover how we can help you go further. ABSA, your story matters. TNCs apply. ABSA Bank Kenya is regulated by the Central Bank of Kenya.
3: The spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
4: The sale at Nairobi Sports House is now on. Thousands of items, including sports equipment and clothing, from brands like Adidas, Reebok, Puma, Speedo, and Stiga. Hurry to the sale at Nairobi Sports House while stocks last. Branches in Nairobi, Mombasa, and Nyali. Purchase online for countrywide delivery from NairobiSportsHouse.com. Something for everyone. In the sale at Nairobi Sports House.
5: Shape your future at UniServe Education September Fair. Meet representatives from over 100 top universities worldwide. Explore undergraduate and postgraduate opportunities, scholarships, and life abroad. Eldoret, Rupa's Mall, Tuesday, 22nd September. Mombasa, Bliss Resort, Wednesday, 23rd September. And Nairobi, JW Marriott, Saturday, 26 September from 10 a.m. Entry free. UniServe Education. Master your own destiny.
2: More of Kenya's premier Asian mix. East FM.
6: East FM. Kenya's premier Asian mix.